0: Community Radio for Griffith. 95.1 2MIA FM. Serving the Griffith community since 1988 on 95.1 FM and streaming on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. Welcome to the local one, 2MIA FM.
1: Hey, got time to listen.
0: Now, another hour of Griffith's widest variety of music with Bobby's Punjabi Talk Show. Hashtag part of your community.
2: हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, थोड़ा अपना बॉबी हाजिर हाँ, थोड़ा फेवर शो बॉबी पंजाबी टॉक शो लैके, तो आप शुरू करते हैं अज का शो एक बहुत ही प्यारे शब्द के नाल, जिसनों गाया दिलजीत दोसांझ ने, तो उस तो बाद आप गुरमत कथा विचार चलावेंगे 8:45 तक। सो 8:45 तो थोड़ी सोंग्स रिक्वेस्ट लवेंगे, जो भी पंजाबी सोंग तुम सुनना चाहते हो साड़ी वैबसाइट पर तुम जा सकते हो www.2miafm.org.io तो जाके रिक्वेस्ट बटन प्रेस करके जो भी पंजाबी गाना तुसी सुनना चाहते हो 10 बजे तक तुसी रिक्वेस्ट भेज सकते हो। एक्चुअली अज साडे मानयोग अंकल रोहन सिंह चौहान जी अज नहीं आ रहे, उन्हां दी सेहत अजे 100% सही नहीं है, इस करके अगले वीक आउणगे। पर आपां शुरू करते हैं अज दा शो इस बहुत ही प्यारे शब्द दे नाल, जिस नूं कहा दिलजीत दोसांझ ने, आर नानक पार नानक।
3: शाह सुल्तान गिरहा से तुलना हो मनी जे तिस मनो न मिसरे।

कोई कारोबार करे ते उहदे च उन्नति ना होवे ते उस कारोबार तो भी निराश हो जांदा है, उदास हो जांदा है, बदलदा है। इस तरह बाहर मनुख गुरु बदलता रहता है, आश्रम बदलता रहता है, देवी देवते बदलता रहता है, तीर्थ बदलता रहता है, सत्संग दे केंद्र बदलता रहता है, ते भटक भटक के जब कुछ नहीं मिलता तो ईश्वर तो निराश हो जाता है। ये भी मैं अर्ज कर दिया। और मैं इस तरह दे अपनी जिंदगी च हजारा मनुख देखे।

ने निराश। अगर हुण मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आउंदे भी नहीं ते बद्दा चट्टी रसम अंदरों निराश ने। कारण भई निराशी बहुत दिन लागे, देश दे संतर में सगले जागे, बड़े थावां ते चक मारिए जागे देखे ने, पल्ले कुछ नहीं पिया। और वाकई जे 10,000 सतसंगी हवन, 10,000 इस तरह दे मनुख करण वाले हवन, ते किधरे कोई एक अद्धे पल्ले खेड होंदी है, वो भी आम बंदे नूं ते पता चलदा नहीं, तो निराशा। मनुख दे कदम ही दसदे ने जद गुरुद्वारे दी तरफ आ रहा हुंदा है, ए भरोसा ए आसा नहीं कि खेड बनेगी। ए भी मैं अर्ज करदे हां, कदमां दी चाल ही दसदी है निराश है। माड़ा मोटा भी कोई रस्ते च कम पै जाए, सत्संग छोड़िया जा सकदा की है, सत्संग कर लिया रोज देखदे हां, थोड़ी जिया भी कोई घटना घट जाए छोड़िया जा सकदा है सत्संग। कहिंदे ने दरियावां दे वैण मुट्ठी भर रेत दे नाल नहीं रुकदे, इंज मैं रेत पावां ते आखां दरिया रुक जाए। दरियावां दे वैण मुट्ठी भर रेत दे नाल नहीं रुकदे, परमात्मा दे रस्ते ते जिंदगी दा बहाव बिल्कुल मामूली गल्लां करके रुकया है। मनुख कोल सुन लेना, हरेक कोल सुन लेना, बहुत छोटियां छोटियां गल्लां ने मनुख नूं रोकया है, बिल्कुल छोटियां छोटियां समस्यावां ने। मुट्ठी भर रेत दे नाल जीवन दे बहाव रुके हुए ने, बहुत छोटियां छोटियां गल्लां करके मनुख रुकया है। कारण आसा नहीं बजदी। कबीर कहिंदे ना, आसा करिए राम की अवरे आस निरास। एक बड़ा कीमती नुक्ता बयान कर दिता है कबीर ने, जितने चिर तक हर एक दे नाल आसा दी डोरी टुटदी नहीं, मनुख आसा दी डोरी प्रभु नाल जोड़दा भी नहीं। जितने चिर तक टोटली निराश ना होवे सारिया तो आस परमात्मा दी बजदी भी नहीं। जितने चिर तक ए आस है फलाने तो सुख मिल सकदा है, फलाने तो प्रभुता मिल सकदी है, फलाने तो जस मिल सकदा है, फलाने तो रस मिल सकदा है, ए आसा है, उतने चिर तक यकीन जानो परमात्मा दी कोई आस नहीं। अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आया तो एक रस्म कुछ भय होवेगा, या एदे विच भी कोई संसार दी आसा होवेगी निरंकार दी नहीं। आसा करिए राम की अवरे आस निरास। जितने चिर तक मनुख टोटली निराश ना हो जाए प्रभु दी आस पैदा ही नहीं आती। शायद इसे वास्ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने साफ कह दिता, आसा मन सा सगल ते आ गए, जगते रहे निराशा। हुण खेड बड़ी औखी है, किस तरह निराश होवेगा, मुश्किल है। इन्हें ते बड़ी आसा दी डोरियां बनी हुई ने, ओ कम सिरे चढ़ गया ते बड़ा आनंद मिल जाएगा, ओ हो गया ते बड़ा रस मिल जाएगा, कुछ भी हो जाए सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति होंदी और कुछ भी नहीं होंदा, कुछ भी नहीं होंदा। चूंकि शरीर दा पूरा संबंध ही बाहर दा है, ते शरीर दियां लोड़ां भी बाहरों ही पूरियां होंदियां, अंदरों नहीं आउंदियां। शरीर दे अंदर दा पानी बाहर दे पानी नाल संबंधित है, अगर बाहर पानी ना होवे तो अंदर दा भी मुक जाएगा। शरीर दे अंदर दी पवन बाहर दी पवन नाल जुड़ी हुई है,
अगर बाहर दी पवन नाल संबंध टूट जाए तो अंदर भी नहीं रहेगी। शरीर दी अंदर दी अग्नि दा बाहर दी अग्नि नाल संबंध जुड़े होया है। अगर बाहरों सूरज ठंडा हो जाए तो उस तो पहले मनुख भी ठंडा हो जाएगा, शरीर भी ठंडा हो जाएगा। ते मुर्दे दी पहचान की कहने हाथ पैर ठंडे हो गए, ये तो ठंडा हो गया। अंदर गर्मी बनी हुई क्योंकि बाहर अग दा केंद्र सूरज है। अंदर दी पवन बाहर दी पवन नाल संबंधित है। अंदर दा पानी बाहर दे पानी नाल संबंधित है। शरीर दियां जितनियां भी लोड़ां ने बाहरों ही पूरियां होंदियां ना, अंदरों नहीं होंदियां। ते जिन्ने चिर तक ए आसा बजी हुई है, सुख भी बाहरों मिलेगा, आनंद भी बाहरों मिलेगा, रस भी बाहरों मिलेगा, क्योंकि शरीर नू आज तक जो कुछ मिले है बाहरों मिले और बाहरों ही मिलता है। ये मनुख बाहरों निराश नहीं हो सकता। ते जे बाहरों निराश ही नहीं होया ते परमात्मा दी आस किथे? मुश्किल है, कठिन है। कलगीधर पिता ने भी साफ कह दिता है, मन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। उदास ते निराश तू हो सकदा है, पहले घर नू उजाड़ समझ ले। हर पासे बंदा निराश उदास हो जाए कहिंदा घर जांदे आ। ते गुरु गोबिंद सिंह जी कहिंदे घर भी उजाड़ लगे, की है तेरे घर विच। हर वतन परदेश तो उदास हो जाए मनुख, अपने वतन जाइए, देश जाइए, अपने शहर जाइए। साहिब कहिंदे किसी भी शहर चला जाए हर शहर उजाड़ है। महा भयान उद्यान नगर कर मानिया, गुरु अर्जन देव जी है ते महा उजाड़, पर कीता की जाए इसने नगर मनिया शहर मनिया, उजाड़ नू शहर आखी जा रहा है। कबरां दे कठ नू शहर आखी जा रहा है। जल्दियां हुई चितावां कुछ जल रही ने, कुछ जलन वालिया ने, औखे ना होना। उजाड़ नू शहर कही जाता है गुरु अर्जन देव जी। महा भयान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समगरी पेख सच कर जाने। झूठ किसनों कहिंदे ने? जो है ते नहीं हो जाता। झूठ जो है और है वो ही सच है। बड़ी ध्यान नाल सुनना, जो है और है उनु कहिंदे अकाल, जो है ते नहीं हो जाता उनु कहिंदे काल। काल दो रंगी है, समा दो रंगी है। काल समय नु कहिंदे ने, वक्त नु कहिंदे ने। अकाल समय तो परे दी दुनिया, काल वक्त नु कहिंदे ने। परमात्मा दे च कोई समा नहीं, इस चक्कर च ना पैना। परमात्मा दे च दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है। कबीर ते खुल के कहिंदे ने, दिन सुरैन बेद नहीं शास्त्र। मैं इस पौड़ी दा इस वास्ते इतना खुलासा कर रहा, अंतरगत तीरथ मलनाओ। जितने चिर तक ध्यान अंदर दी तरफ नहीं मुड़िया, पाठ पूजा कथा कीर्तन निमाज तीर्थां दा भ्रमण सब कर्म कांड है, सब कर्म कांड है। धार्मिक मनुख होना उस दिन शुरू होता है जब बार सब कुछ तो उदास हो जाए, निराश हो जाए, ते अंतर्मुखी हो गए। ते तीरथ ते अंदर है, अंतरगत तीरथ मलनाओ। ठीक है,
अंदर प्रवेश करन दे कुछ साधन भी ने, बाहरों जुटाने पैंदे ने। साधन सारे जुटा देईए ते अंदर प्रवेश ना करिए, बस उना साधना नू कर्म कांड कहंदे ने। बस साधन कट्ठे करी जांदा है, साधन ही अंदर प्रवेश नहीं करदा। बार काल है दिन सरैन वेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकार। दिन नहीं है, रात नहीं है, समय दी पहचान किस तरह होती है? दिन करके रात करके। वक्त दी पहचान होती है दिन करके रात करके। कबीर कहंदे ने निरंकार दी दुनिया च ना दिन है ना रात है। उन्हां दी कहण तो मुराद ए है समा नहीं है, वक्त नहीं है, काल नहीं है। काल दो रंगी है, काल दिच दुख है सुख है, अकाल दिच दुख सुख नहीं है। ना दुख है ना सुख है। इस चक्कर च ना पै जाना कि नाम जप के सुख मिलता है, नहीं। नाम जप के मनुख दुख सुख दोहां तो उच्चा उठ जांदा है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके कंचन माटी माने। जद मैनू कोई कहंदा है नाम जप के ते ज्ञानी जी सुख मिलेगा, ओदी अवस्था देख के मैनू कहना पैंदा जी हुण सीधा ही मैं कह दिया नहीं मिलेगा। कई दफा मैनू नास्तिक समझ लैंदा है। ए भी मैं अर्ज करा, इस तरह दा भुलेखा पता नहीं कईयां नू लग्या। मैं कहिंदा नहीं मिलदा। जिहनू तुसी सुख कहंदे हो सुख ते कबीर कोल भी नहीं सी। जिहनू तुसी सुख कहंदे हो ते बड़े बड़े अवतारां कोल भी नहीं सी, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियां कोल भी नहीं सी। तो किस तरह मन लईए सुख मिलदा है? ते जे कोई सियाणा पुछ लवे फिर की मिलदा है? सुख दुख तो उच्ची अवस्था मिलदी है, जिथे ना दुख है ना सुख है। ओ की है अवस्था? उस अवस्था दा कोई नक्शा नहीं पेश कीता जा सकता, उस अवस्था नो जबान नाल भी बयान नहीं कीता जा सकता। और उस अवस्था दा चित्रण रूपरेखा इन्हां अखां नाल भी वेखना औखा। तो फिर भरोसा किस तरह बजे? मनुख निराश है परमात्मा तो। इतने संतां दे होंदे आया मनुख निराश है, इतने भगतां दे होंदे आया मनुख निराश है, कुरान दे होंदे आया मुसलमान दे अंदर कोई खुदा दी आस नहीं दिखाई देंदी, औखे ना होना। वेदां दे होंदे आया, उमनिष्ठां दे होंदे आया, सिमरतियां दे होंदे आया, पुराणा दे होंदे आया, कोई आस प्रभु दी हिंदुआं दे अंदर नहीं दिखाई देंदी। खसम दी इतनी बाणी, धुर दरगाह दी इतनी अगम्मी बाणी होंदे आया भी औखे ना होना। कोई सिखां दे अंदर गुरु दी प्रभु दी आस नहीं दिखाई देंदी। जिंदगी दसदी पई है, जीवन ही दसदा पिया है। किस आस दे च मनुख जी रहा है? जिंदगी दसदी पई है। जीवन दा लक्ष्य की है? जिंदगी दसदी पई है। और इस तों पता चलदा है कोई आस प्रभु दी नहीं पैदा हुई। परमात्मा तो ते निराश है। मैं एक दफा फिर दोहरावां, अज तक जो कुछ भी मनुख नूं मिले है बाहरों मिले है, अंदरों ते कुछ लभिया ही नहीं, ते ना ही कदी अंतरमुखी होया। ते बार पूजा पाठ कर करके भरम के तीर्थां दा रटन कर करके जद कुछ नहीं लभिया तो फिर की है? आसा ते संसार दी बनी, निराशा परमात्मा दी पैदा हो गई। भई निराशी बहुत दिन लागे। दो चार नास्तकां दे मैं बोल किताबां पढ़ियां ने, केशव चंद्र बंगाल दे सन, सालू के प्रोफेसर सालू के केरला। ए अपने पहले जीवन दे बड़े आस्तिक सन।
ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕੇ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰੋ, ਗਤੀ ਚੱਲਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਤੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਓ, ਮੈਲ ਧੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਉਂਜ ਨਹੀਂ ਧੁੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਦੀ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਪਾਪ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਦ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਧ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਤਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਐਸੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤੀਰਥ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪਾਪ ਇਤਨੇ ਧੁੱਲ ਗਏ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਚ ਮਾਘੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਹਰੀਦੁਆਰ ਵਿਚ ਕੁੰਭ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਸੂਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਕੁੰਭੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਨਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਧੁੱਲਣਗੇ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਧੁੱਲਣਗੇ। ਬਲਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਆਂਕੜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿਚ ਉਪੱਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਪ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕੇ ਵਸ, ਤੈ ਪਾਪਨ ਤੇ ਪੁਨ ਪਾਪ ਲਜਾਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਪ। ਤੋ ਖੈਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਲਮਕਾਵਾਂ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ, ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਮਨੋ ਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਣ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੁੱਲਦੇ, ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੇ, ਜਸ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲੀਏ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀਏ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭੁਲੇਖ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ
अज तक जो कुछ मिलिया मिलिया तो बाहरों ही है, अंदरों ते मनुख नूं कख नहीं लभिया, ते ना ही मनुख ने अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करदा है ध्यान, तो मनुख ने अंदर ते ध्यान नूं प्रवेश कराया नहीं। ध्यान इसका बार रहा है, उद्यम इसका बार रहा है, भज दौड़ इसकी बार रही है, ते बारों जैसे जैसे इसनों कुछ मिलता गया, भरोसा भी बजता गया, यकीन भी बजता गया, और जो कुछ आज तक मिले है मिलिया भी बारों ही है। मैं फिर दोहरावां, धन मिले है बारों मिले है, प्रभुता मिली है बारों मिली है, परिवार दे संबंध जुड़े ने बारों ही जुड़े ने, मित्र मिले ने बारों मिले, जस मिले है बारों मिले है, पदार्थ मिले ने बारों मिले ने, तो यकीन बंदे दा पुख्ता हो गया परमात्मा भी बारों ही मिलेगा। इस वास्ते लखां करोड़ां मनुख जो धार्मिक कहलाए जांदे ने, पदार्थां दी तरह परमात्मा नूं भी बारों ही लभदे ने। कई दफा पदार्थ लभण वास्ते ही बार परमात्मा दा सहारा लभदे ने। उन परमात्मा इस वास्ते चाहिदा है कि बारों कुछ प्रभुता मिले, पदार्थ मिले ने, उन सीधे रूप दे शायद बथेरियां दी लोड़ परमात्मा भी नहीं है। उसका एक कारण भी गुरु अर्जन देव जी महाराज दसते ने, भई निराशी बहुत दिन लागे, देश देशांतर में सगले जागे। बड़े तीर्थां ते गया, बड़े धर्म मंदिरां विच गया, बड़े सत्संग दे स्थानां ते गया, जिन्हों कहिंदे ने समाधि, जिन्हों कहिंदे ने परम आनंद, जिन्हों कहिंदे ने परम रस, उहदी ते कोई झलक बनी नहीं। तो निराश है, भई निराशी, पदार्थ दे नाल ते आसा जोड़ी हुई है, परमात्मा तो निराश है, पता नहीं है कि नहीं, निराश है। ये वाक धन गुरु अर्जन देव जी का है।